0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Horror hit Backrooms will be releasing a special extended cut of the film with 15 minutes of extra footage titled Backrooms Everything Must Go Edition. The film is directed by Kane Parsons, a 20-year-old who rose to prominence making short films on YouTube.
7: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
8: brand new honda city chahiye hai बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
10: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
11: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No Frost, no worries.
2: City FM 89.
12: We're playing your song.
13: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
14: Welcome back, everyone. I hope you've been enjoying the show and these past few songs. So the weekend is here, whether you decide to go out or stay home, protecting yourself from dengue starts with eliminating stagnant water, as even a bottle's cap worth can serve as a breeding ground for the Aedes mosquito. Make it a habit to empty AC trays, scrub out plant saucers, and keep water storage tightly covered. Since these mosquitoes are aggressive daytime biters, armor up by wearing long sleeves and applying a reliable repellent. Stay covered, stay vigilant, and let's keep the buzz away. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम.
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
3: City FM 89.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
9: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
11: Log on to facebook.com/cityfm89 and share your feedback.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
12: Welcome back, everyone. I hope you've been enjoying these past few songs. All right, so it's time for your pop culture roundup.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
5: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
7: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
0: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
8: Hold on! Special delivery coming through!
9: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
10: We're now live on WhatsApp.
11: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
10: It's as easy as 03142-898989.
9: Save our number now and WhatsApp us.
0: City FM 89. We're playing your song.
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Brand new Honda City चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
7: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: सिटी FM 89.
9: The first time at the disco.
10: When you love someone, it's natural, not demanding.
9: Holiday with friends. Retro cinema.
11: Hey, where did we go? Days when the rains came.
9: To music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
12: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. Only on City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
13: Welcome back, everyone. It's time to talk front page interesting news, where we discuss all the cool, fun things that are happening across the globe. And today I have one for you, which is the Mirror Puzzle Octopus Breakthrough. And the story is, researchers at Dartmouth have just shattered what we thought we knew about marine intelligence. In a brand new study, scientists prove that octopuses can actively use mirrors to find food hidden completely out of their line of sight. While animals like chimpanzees or dolphins use mirrors to look at themselves, the octopus treated the mirror strictly as a high-tech tool. They looked at the reflection, calculated the reverse spatial angles, and instantly reached around blind corners to grab their target meal. It's the first time a non-vertebrate creature has ever shown the ability to decode a mirrored environment to solve a real-world problem. And yeah, for decades, science assumed that navigating a mirror required a complex mammalian brain structure. Octopuses don't even have a centralized brain like ours. 2/3 of their neurons live right inside their arms. This discovery completely flips the script on how intelligence evolves, proving that complex problem solving and spatial mapping don't require a backbone or a traditional brain layout. Fascinating. I love octopuses. They're just such a fascinating creature. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m. City FM, FM, FM, FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City
3: FM
1: 89.
5: Trending today.
6: Horror hit Backrooms will be releasing a special extended cut of the film with 15 minutes of extra footage titled Backrooms Everything Must Go Edition. The film is directed by Kane Parsons, a 20-year-old who rose to prominence making short films on YouTube.
1: City FM 89. Hire Kanaya. No frost IoT refrigerator. Jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
10: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
5: Sound of your city. City FM 89.
11: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on what's happening in your city every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
12: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: We're playing your song.
3: Brand new Honda City चाहिए है. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: सिटी FM 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
6: वी आर पॉप कल्चर.
7: Speak your mind. Today we're talking about ghosting. Why just because someone doesn't text you back doesn't mean that you need to go off the deep end.
8: Tell it as it is.
7: Friends, and I want to talk about if they matter or if they don't.
9: What did you say?
10: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it.
8: And add just a little more

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
7: brand new Honda City chahiye hai बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
9: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
8: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
11: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City
5: FM 89.
1: Coming up next,
6: The Rush Hour with ABD.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: Trending today.
8: Horror hit Backrooms will be releasing a special extended cut of the film with 15 minutes of extra footage titled Backrooms Everything Must Go Edition. The film is directed by Kane Parsons, a 20-year-old who rose to prominence making short films on YouTube.
9: City FM 89.
10: Brand new Honda City चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
11: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth ताकि ये grow करे 50% faster.
12: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
3: City FM 89
1: on the dial.
13: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and I hope you're having an absolutely amazing Friday. Guys, it is the weekend, TGIF, cue Rebecca Black's It's Friday song. Vibes are amazing. I have a really fun show planned for today and I cannot wait to be with you guys for the next 3 hours. So without further ado, let's start the show. Let's play some bangers.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Pura hafta rabta barqarar Jazz Lajawab Plus offer ke saath abhi *5655 hash dial karo aur pao 8 GB data, 4000 Jazz minutes aur SMS aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: City FM 89.
6: We're playing your song.
7: You're listening to
8: The Rush Hour with ABD.

0: carry. The perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
7: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
8: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: City FM 89.
9: Mornings evolve, and so do we.
10: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
11: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
9: The freshest music, the hottest gossip.
10: And the energy Gen Z lives on.
9: It's bold, it's current, it's your morning routine.
10: The Breakfast Show.
9: Only on City FM 89.
12: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: City
3: FM
1: 89.
3: It's 6 p.m.
4: This time check is brought to you by Jazz.
5: City FM 89, we're playing
6: the song. Trending today.
7: Horror hit Backrooms will be releasing a special extended cut of the film with 15 minutes of extra footage titled Backrooms Everything Must Go Edition. The film is directed by Kane Parsons, a 20-year-old who rose to prominence making short films on YouTube.
5: FM 89.
8: You got me going crazy.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: City
2: FM
1: 89.
9: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैज कैश.
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
11: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat 2500.
12: Agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
11: Ek duni do do duni chaar.
13: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
14: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
15: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं. इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
10: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
16: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
4: City FM 89.
1: You're listening to
3: The Rush Hour with ABD.
17: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going to be doing Faltu or Fire. Guys, please, let's engage. 03142898989. When I say this, I want you to message as long as you are not driving. Guys, please do not text and drive. That is absolutely important. If you are driving, just sit in and enjoy, you know, the show. Don't participate. But if you are a passenger princess having a great time, WhatsApp in. Let's do this together. Okay, Faltu or Fire, first one. Standing coffee dates. No chair, no distraction, just a quick chat and caffeine. Guys, absolutely faltu. So faltu. Like, I know we all are trying to do like the standing desks and all of this stand stuff. And you know, you get your stand alerts on your Apple Watch. But no, if I'm going to meet a friend or a potential date or something, I do not want to be standing and just having coffee and like, you know, dancing around, putting one weight on one leg and then one weight on the other. Like, I just don't know. I don't think a standing coffee date is the move. AI influencers, they're getting brand deals, followers, and DMs, but they don't even exist. Faltu or fire? Okay, unpopular opinion. I think it's fire for the person that has created that, but I think it's faltu for the rest of us. I would not want to follow something that does not exist. I think the reason influencers exist is because you align with their views, with everything, what they do, the lifestyle they live, and hence you follow them. If you don't, you wouldn't be following them. So I think in that basic logic, I just find an AI influencer, for me, faltu. But for the person that made it, they're making bank, absolute fire for them. I'm going to head to a quick break before we do the next few ones. So enjoy the next up songs.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
6: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
0: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
1: You're listening to
7: The Rush Hour with ABD.
8: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are doing Faltu of Fire. Okay. Keeping leftover fries crispy by reheating them in an air fryer with a splash of water. Is this culinary wizardry or extra effort you'll never actually do? I think this is absolutely faltu. First of all, why are you reheating fries, guys? Like, either have the fries tanda, like raw dog it, or just, I don't know, like, I've never heard of this. Like, I've heard about this for bread. I used to do this for bread. I'd microwave my bread, put a bit of water on it. It would, like, be less sakhat. Understandable. But fries, do I really need to be putting in that much effort for fries? No, absolutely not. Faltu, absolutely faltu. Putting your laptop on an egg tray or cooling rack to stop overheating. DIY cooling system or fire hazard waiting to happen. Faltu or fire. Again, absolutely faltu, guys. Literally, 1,000 rupees, you can get a laptop stand that props it up. Why are you doing this to yourself? Why are you risking your laptop that is probably worth lakhs and just like gir gaya, oh no, now what? Like, come on, guys. Think long term. Think long term. Absolutely faltu. Do not agree with this. Let me know if you agree. Enjoy the next few songs. When we come back, I have a nice weekend watch list of some, not horror, but like almost horror films, okay? Enjoy the next few songs.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: पीडियाश्योर से आईलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: पीडियाश्योर से आईवीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
0: City FM 89 sounds different.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going to be doing a couple of more horror films. I'm going to be telling you about your weekend watch list. Okay, so we have The Late Night with the Devil. It was released in 2024. It's essentially, the vibe is found footage meets vintage 70s television. I won't lie, I've watched this and I'm a bit confused on my opinion about it. But please WhatsApp in on 0314289 8989 after you've watched it and tell me your thoughts so we can discuss this maybe in the next show. It's about a struggling late night talk show host who attempts to boost his tanking ratings on Halloween night 1977 by hosting a live broadcast featuring an interview with a girl who allegedly claims to be possessed by a demon. What starts as an occult television stunt quickly unravels into a chaotic live-to-air nightmare. This was one of the weirdest movies I've watched. Like, not in a bad sense, just odd. I think the whole 70s, the show, all of that just kind of threw me off. But let me know your thoughts. Next up, we have Barbarian 2022. It's an ultimate don't go in the basement scenario. It's if you're claustrophobic, you're going to hate this film. It's a young woman arrives at a booked Airbnb in a dilapidated Detroit neighborhood late at night, only to discover a strange man is already staying there due to a double booking error. Against her better judgment, she decides to stay the night, and as soon as she discovers, the house hides a sprawling subterranean labyrinth of pure terror. Sounds amazing. I think I'm going to add this to my weekend watch list, but that is all that I have for the horror films. I've given you three guys, but the three good ones. The Late Night with the Devil, again, I'm a bit on the fence, but I want you guys to watch it and let me know your thoughts. Enjoy the next few songs. We come back. I have a little bit of tech news to perk you guys up.
13: So tell us, you're the biggest star in the world tonight. How does it feel?
14: Honestly, I don't really feel anything at all.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Horror hit Backrooms will be releasing a special extended cut of the film with 15 minutes of extra footage titled Backrooms Everything Must Go Edition. The film is directed by Kane Parsons, a 20-year-old who rose to prominence making short films on YouTube.
2: City
7: FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing your song.
8: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
11: दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
12: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
11: दुनी दो दो दुनी चार
13: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल No Frost, No Worries.
14: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
15: Hold on! Special delivery coming through!
16: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
17: We're now live on WhatsApp.
18: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
17: It's as easy as 03142-898989.
16: Save our number now and WhatsApp us.
4: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
19: The Right.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
8: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू है.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: Attention all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
10: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
11: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
10: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: यू नो द सिटी, बट यू नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन इट? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
13: Hold on! Special delivery coming through!
14: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
15: We're now live on WhatsApp.
16: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
15: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
17: City FM 89, we're playing your song.
18: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
5: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार।
9: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
11: होल्ड ऑन, स्पेशल डिलीवरी कमिंग थ्रू।
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy as 03142-898989.
12: Save our number now and WhatsApp us.
15: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
3: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
10: Discover fire new tracks, fresh drops and the artists you need on your playlist.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: You're listening to
3: Future Sounds.
4: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
6: Hold on, special delivery coming through.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
3: City FM 89, we're playing the song.
0: You're listening to
2: Beach Camp.